0: The data centre is still subject to approvals. Research released today shows a clear gender gap in Australia's housing system. Scarlett Coppola has the story.
1: Younger women with children have overtaken women over 55 as the fastest growing group of people experiencing homelessness. The report from Australians Investing in Women and Per Capita calls for a net increase of at least 170,000 social homes by 2030, restoring social housing to 5% of Australia's housing stock. CEO Julie Riley says Australia's housing crisis gets attention, but the gender dimension is too often ignored.
0: Mining magnate Gina Rinehart says Queensland should offer some of its land to Elon Musk. During a speech at the National Bush Summit in Townsville, Mrs. Rinehart said Queensland could attract microchip, defence manufacturing and satellite industries. And radio host Jackie O. Henderson will continue to pursue an $82 million claim against her former employer, ARN. Her 25-year partnership with Carl Sanderlands came to an end following a bitter on-air argument. Sanderlands yesterday made a $12 million settlement after seeking $85 million. Henderson claims she was wrongfully terminated, a claim disputed by the media company. And in sport, the under-19s men's State of Origin game kicks off this hour with the Blues looking to win back the series. Top league players have given their encouragements ahead of the game.
2: Big stepping stone into their careers in the future, and make sure you get behind them.
3: Yeah, I guess you just get a little bit of a taste of what it's like wearing the blue jersey and what it's like playing with the best of the best and what it's like playing at a level above the club level.
4: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
5: अराउंड ऑस्ट्रेलिया की बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त करें
6: ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੋ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਫਤ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ breastscreen.org.au ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ 1320050 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ
7: ਹੌਟ ਸਪੌਂਸਰ
8: ਇੱਕ ਯੂਥ ਜਸਟਿਸ ਵਰਕਰ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਆਪ ਹਿਰਾਸਤ ਮੇ ਲਏ ਗਏ ਯੁਵਾਓਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇਂਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇ ਵੇਤਨੀਯ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਔਰ ਆਗੇ ਬੜ੍ਹਨੇ ਕੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇਂਗੇ अगर आप समर्थन देने वाली टीम के साथ एक फायदेमंद करियर की खोज में हैं, तो यूथ जस्टिस करियर सर्च करें ऑथराइज्ड बाय द विक्टोरियन गवर्नमेंट मेलबोर्न
9: सपोर्ट लोकल लिसन टू योर कम्युनिटी रेडियो हॉट एफएम
10: हेलो वनकम नमस्ते नमस्कारम माय नेम इज शांति एंड यू आर लिसनिंग टू सिंग विद शांति ऑन हॉट एफएम 106.7 இன்னைக்கு ஒரு சேஞ்சுக்கு நான் வந்து இந்த ஷோவை தமிழில் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் கோயிங் ஃபார்வர்ட்ஸ் மேபி தமிழில் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் இட்ஸ் ஹை டைம் அட் இட் த என்னன்னாக்கா போன வாரம் நம்ம இசைஞான இளையராஜாவோட பாட்டுகள் கேட்க ஆரம்பித்தோம் ஒரு சிறு சிறு துளி கேட்டோம் பிகாஸ் அவரோட 50 இயர்ஸ் சினிமாக்கு வந்துட்டு அவர்கிட்ட வந்து அசோசியேஷன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் திரேஸ் பேபி அவர் மணிரத்னம் ரொம்ப குறிப்பிட்டு சொல்லணுங்கிற பாட்டுகள் வந்து இசைஞானியும் மிஸ்டர் பாரதிராஜா ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி போன வாரம் வந்து இயக்குனர் சிகரம் மிஸ்டர் பாரதிராஜா காலமாயிட்டார் இசைஞானியும் பாரதிராஜாவும் இணைந்து கொடுத்த சில மறக்க முடியாத திரைப்படங்கள் அதில் மறக்கவே முடியாத பாடல்கள் நிறைய இருக்குது அப்போ இன்றைக்கி அதிலேருந்து கொஞ்சம் பாடல்கள் நம்ம கேட்கலாம் அப்படின்னு ஆரம்பித்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு திரைப்படத்துக்குள்ளாடி போகலாங்களா